पाथिना जिफता एक बात ने कमोरचा मेनिया हल येर कान ये सराह निसरा होड़ियाँ कान।